0: रणनी मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील, आम्ही सहक्षेपित करू. आणि 8:30 राष्ट्रीय मराठी बातम्या मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होतील, आम्ही सहक्षेपित करू. तसंच 8:40 जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त समन्वित कार्यक्रम सुरुवातीला ठीक 8 समाचार प्रभात दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील, आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है. तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
2: जल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं. रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा. गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की. मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए. फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में. आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से. और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई. इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया. औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली. इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार

0: भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिसमें आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशन बच सकते हैं।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर समय बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए

0: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा, हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across

0: त्याबद्दल काय सांगाल?
1: मला असं वाटतं युवा शक्ती कमी होऊन वृद्धांची वाढणारी संख्या जी काही असते यातून कामगार शक्ती कमी होते. तरुण लोकसंख्येच्या तुलनेत लोकसंख्या वृद्धांची वाढल्यास उत्पादन क्षमतेमध्ये सुद्धा आपल्याला
0: नक्कीच फरक पडत
1: असलेला आपल्याला दिसून येतो आणि आर्थिक विकासाचा वेग त्यामुळे मात्र मंदावू शकतो आणि आरोग्य व सामाजिक सेवांची मागणी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि म्हणून अशा स्वरूपाचा सुद्धा त्यावर परिणाम होत असलेला आपल्याला दिसून येतो. आज जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी लोकसंख्याविषयक जागरूकता निर्माण करण्याचा आणि शाश्वत विकासासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकानं योगदान देण्याचा आपण संकल्प करूयात. धन्यवाद.
0: सर, आज आपण इथे आलात आणि लोकसंख्या संधी की आव्हान या विषयावर आमच्या श्रोत्यांना माहिती दिलीत, त्याबद्दल आकाशवाणीच्या वतीनं मी आपले आभार मानते.
1: खूप धन्यवाद.
0: श्रोते हो, आत्ताच आपण आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या दिनानिमित्त बदलते लोकसंख्या चित्र संधी की आव्हान हा समन्वय कार्यक्रम ऐकलात. सहभाग डॉक्टर लक्ष्मण साळोख, निर्मिती सहाय्य अनुप्रिता भाले. या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते नयन पवार. ही छत्रपती संभाजीनगर केंद्राची निर्मिती होती.
2: आणि हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
3: मैत्रिणींनो, दिनांक 12 जुलै 2026 रविवार रोजी दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळ या कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय प्रसारणामध्ये सुरुवातीला आपण ऐकणार आहात बालिका तसेच महिला सुरक्षा विषयक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी याविषयी ऍडव्होकेट भक्ती धोंडोपंत कुलकर्णी यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा आणि त्यानंतर महिलांचे आजार आणि योग याविषयी आयुर्वेद तज्ज्ञ आणि योग शिक्षिका डॉक्टर मंजुषा चौधरी यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा. हे आकाश
4: श्रोते हो, FM बँड 101.7 MHz आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. यानंतर ठीक 9 वाजता आमच्या केंद्राचं उर्दूतून प्रादेशिक बातमीपत्र प्रसारित होईल.
5: ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है. शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए. पहले खास खबरों की सुर्खियाँ. काबीना के मानसून इजलास का अख्तिताम, 7 दिसंबर से नागपुर में सरमाई इजलास. किसानों के कर्ज की माफ़ी की शराइत में नरमी, आखिरी हफ्ते की तजवीज़ के जवाब में वज़ीर आला का ऐलान. महात्मा फुले जन आरोग्य स्कीम में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीक़ात के लिए खसूसी तहकीक़ाती टीम का क़याम. मेरा गांव सेहतमंद गांव मुहिम के तहत आज से ख़ानदानी मनसूबाबंदी हफ्ता और लातूर चंदा बदउनवानी केस के अहम मुलजिम किशोर जाधव गिरफ्तार. अब खबरें तफसील से. काबीना का मानसून इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ. 22 जून से शुरू होने वाले इस इजलास में 97,706 करोड़ रुपए के ज़िमनी मुतालबात को मंजूरी दी गई, जबकि काबीना ने इस इजलास में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का बिल, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ 21 बिलों को मंजूरी दी. इस इजलास के दौरान कानून साज कौंसिल के नायब चेयरमैन का इंतखाब भी हुआ. असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो गवर्नर से सिफारिश कर रहे हैं कि काबीना का आइंदा सरमाई इजलास 7 दिसंबर 2026 को नागपुर में मुनाकिद किया जाए. इसके बाद दोनों ऐवानों के सुदूर अफसरान ने असेंबली और कानून साज कौंसिल के इजलास मुलतवी करने का ऐलान किया. वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल ऐलान किया कि महात्मा फुले किसानों की कर्ज माफ़ी स्कीम के तहत दस्तियाब 50,000 रुपये की हद को हटा दिया जाएगा और 2,00,000 रुपये तक का फ़ायदा दिया जाएगा. वज़ीर आला कल असेंबली में अपोजिशन की जानिब से पेश करदा आखिरी हफ्ता तहरीक के जवाब में इजहार ख्याल कर रहे थे. इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि 2025 तक कर्ज माफ़ी की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है. वज़ीर आला ने कहा कि इसकी वजह से अब 56,00,000 किसानों को 36,000 करोड़ रुपये का फ़ायदा मिलेगा. वज़ीर आला ने इंतज़ामिया में मस्नूई ज़िहानत AI के इस्तेमाल, स्मार्ट मीटर्स, खाद की फराहमी, बोगस

गए फंड्स का सामाजिक और तकनीकी ऑडिट कराने का फैसला किया है। नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने कल कानून साज कौंसिल में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस ऑडिट से शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल होगी। वो आखिरी हफ्ते की तजवीज़ पर बहस का जवाब दे रहे थे। गुज़िश्ता साल अगस्त और सितंबर के दरमियान शदीद बारिशों ने मराठवाड़ा में 1400 से ज़्यादा मसनू तालाबों और कोलापुरी डैमों को नुकसान पहुँचाया था। वज़ीर दादा भुसे ने कानून साज कौंसिल को बताया कि उनमें से 452 कामों को इंतजामी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि 452 कामों में से 258 काम मुकम्मल हो चुके हैं और 109 काम जारी हैं। सनत के वज़ीर उदय सामत ने कल कानून साज कौंसिल को मुत्तला किया कि छत्रपति संभाजीनगर के नल के पानी स्कीम में काम के मेयार से मुतालिक शिकायतों की तहकीकात के लिए महकमे शहरी तरक्यात की जानिब से एक कमेटी का तकर्रुर किया जाएगा। सामंत ने यह भी कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट एक माह के अंदर पेश की जाएगी और हर 15 दिन में स्कीम की पेशरफ्त का ऑनलाइन और ज़मीनी हकाइक के जरिए शहरी तरक्की के महकमे की जानिब से जायज़ा लिया जाएगा। रुकन अंबादास दानवे ने इस सिलसिले में एक मुख्तसर बहस की। सामंत ने बताया कि फ़िलहाल स्कीम का 83.5% काम मुकम्मल हो चुका है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने इस इजलास में शहरियों को मायूस किया है। मानसून इजलास के अख्तिताम के बाद मुनाक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रुकन असेंबली नाना पटोले, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के भास्कर जाधव और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के जयंत पाटिल ने हुकूमत के कामों पर तनकीद की। कानून साज कौंसिल के 5 अरकान की मियाद 6 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। इन अरकान को कल अलविदा दिया गया। इसमें छत्रपति संभाजीनगर ग्रेजुएट हलके के रुकन सतीश चौहान, शरद चंद्र पवार ग्रुप से 1, कांग्रेस से 2 और 1 आज़ाद रुकन शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि नासिक ज़िले में महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य स्कीम में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीकात के लिए नासिक डिवीज़नल कमिश्नर प्रवीण गेडाम की सदारत में एक खसूसी तहकीकती टीम तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला इस स्कीम के हवाले से मुनाक़िदा जायजाती इजलास से ख़िताब कर रहे थे। SIT की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद वज़ीर आला ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गबन शुदा फंड्स की वसूली का भी इंतबाह दिया। वज़ीर जयकुमार गोरे ने कानून साज असम्बली में एक तजवीज़ के जवाब में यकीन दिलाया कि महाराष्ट्र में हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए जाब्ते बनाएगी कि ज़िला परिषद स्कूलों में असातिज़ा के तबादले का अमल तालीमी साल के आगाज़ से पहले ही मुकम्मल हो जाए। वज़ीर सेहत प्रकाश आबिटकर ने बताया कि महात्मा फुले जन आरोग्य स्कीम में अब प्राइमरी सतह के पेट के स्कैन को भी शामिल किया जाएगा और इस स्कीम में कैंसर से मुतालिक इलाज के लिए ज़्यादा रकम दी जाएगी। महाराष्ट्र SC ST VJNT OBC SBC तरमीमी बिल जो ज़ात की तस्दीक के अमल में तरमीम करेगा कल कानून साज कौंसिल में मंजूर किया गया। कानून साज असम्बली पहले ही इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। मेरा गांव सेहतमंद गांव मुहिम खानदानी मनसूबा बंदी हफ्ता 11 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक मनाया जा रहा है। इस मौके पर छत्रपति संभाजीनगर ज़िले में एक खसूसी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिन्नू PM ने इसमें शिरकत की अपील की है। ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विवेक गायकवाड़ की रहनुमाई में हिंगोली ज़िले में भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हफ्ते को लागू किया जाएगा। खसूसी ख़ानदानी मनसूबाबंदी कैंप, नसबंदी सर्जरी, ख़वातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग, स्कूली तलबा की सुबह की रैली और सेहत के पैगाम पर मबनी मेलों का इनेकाद भी किया जाएगा। लातूर तालुके के खंडापुर में अखंड हरिनाम हफ्ते और मौसीकी त्यौहार में 3,65,00,000 रुपये के मुबैना अतिया घोटाले के अहम मुलजिम किशोर धोंडीराम जाधव उर्फ शिवनीकर को कल मकामी क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। मुलजिम मोतीनगर इलाके में वाक़े अपने मकान की तीसरी मंजिल पर बाहर से ताला लगा कर छुपा हुआ था। लोकल क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने कल छत्रपति संभाजीनगर और जालना से 6 अफराद को हिरासत में लिया। धाराशी और बीड़ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान

0: भजन पेश कर रहे थे सुरेश वाडेकर और हमनवा। इसके साथ ही सुबह का ही प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमारी नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सुबह के 9:45 हुआ चाहते हैं, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, आज है 11 जुलाई 2026, तो आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को पलटते हैं। 1922 की बात कर लेते हैं। आज ही के दिन हॉलीवुड बाउल की शुरुआत हुई। लॉस एंजलिस के बोल्टन कैनियन में एक खुले प्राकृतिक एम्पी थिएटर के रूप में हुई थी। सन 2002 में आज के दिन चांग सोंग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 2003 की बात कर लेते हैं सुभद्रा, तो आज ही के दिन हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत हुई थी। भारतीय भाषाओं में ज्ञान का सबसे बड़ा मुक्त ऑनलाइन स्रोत बन चुका है ये विकिपीडिया। 300 से अधिक भाषाओं में ये उपलब्ध है।
2: People consult this every day, every second, every minute, every hour.
1: और अगर 1979 की बात की जाए तो अमरीकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काई लैब विखंडित होकर ऑस्ट्रिया के पश्चिमी तट के समीप समुद्र में जा गिरी। और सुभद्रा, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों को याद करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी की। प्रभावशाली लेखन ने सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिसमें उन्होंने दलितों, महिलाओं और गरीबों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बड़ी ही प्रखरता से आवाज उठाई। भीष्म साहनी की महान रचनाओं में तमस, बसंती, झरोखे, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलमा, निलोफर, चीफ की दावत, फैसला, चीले, अमृतसर आ गया शामिल है। साल 1957 से लेकर साल 1963 तक भीष्म साहनी मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के तौर पर कार्यरत रहे, और इस दौरान इन्होंने करीब 2 दर्जन किताबों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें टॉल्स्टॉय के उपन्यास भी शामिल थे। अनुवाद को भीष्म साहनी एक कला मानते थे। वो लिखते हैं, अनुवाद कार्य भी एक कला है। पाठक को जो रस कहानी उपन्यास को मूल भाषा में पढ़ने पर मिले, वैसा ही रस अनुवाद में भी मिले, तभी अनुवाद को सफल और सार्थक अनुवाद माना जाता है। वाकई में सुबह देखा जाए तो ट्रांसलेशन, जिसे हम अनुवाद करते हैं, बेहद जरूरी है। और कहानी को वो अगर एक गलत अनुवाद हो जाए तो बदल कर रख देता है। और श्रोता, अब हम याद कर रहे हैं ऐसी भारतीय नायिका को जिनके भारी भरकम शरीर, मजेदार चेहरे के हाव भाव और कमाल की कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है। जी हाँ, उस समय सभी डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी वो। हम बात कर रहे हैं टुनटुन की। हिंदी सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन थी ये। सबको हंसाने वाली कलाकार का बचपन त्रासदी से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन वो सिंगर बनने मुंबई और नौशाद के संगीत में अफसाना लिख रही हूं जैसे सुपरहिट गाने गाए। और इसके अलावा मिस्टर एंड मिसेज 55, आर पार, प्यासा के लिए उन्हें याद किया जाता है, तो क्यों ना उन्हीं के गानों की ये प्यारी सी मेडली सुन लेते हैं।

0: And today is also the birthday of Jhumpa Lahiri, English-born Indian-American novelist and short story writer whose works illuminate the immigrant experience. While in graduate school and shortly thereafter, Lahiri published a number of short stories in magazines as a New Yorker, Harvard Review and Story Quarterly. She collected some of these stories in her debut collection, Interpreter of Melodies, in 1999. And among the awards garnered by Interpreter of Melodies were 2000 Pulitzer Prize for Fiction.
1: और श्रोताओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपके शहर में कौन कौन से होंगे कार्यक्रम। राजधानी दिल्ली में शाम 6:30 बजे से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शाम आयोजित होगी। वहीं इंडिया हैबिटेट सेंटर में 7:30 बजे से द स्टीन ऑडिटोरियम ट्रेजेडी में कॉमेडी का मंचन होगा। और इसके साथ ही वक्त कह रहा है कि हमें कहना होगा आपसे अनुमति, क्योंकि इन दिनों बारिश का भी मौसम चल रहा है, तो क्यों ना आरडी बर्मन के ये संगीत जो है वो से सजे ये इस प्यार भरे गीत को सुन लेते हैं। सुन रहे हैं लता और यसुदास की आवाज में ये प्यार भरा नगमा।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया। दोनों ने दोतरफा तिजारत को दोगुना करके 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का निशाना मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ़द की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को एक ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिसे दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। अमेरिका ने ईरान से राबते वाले अफराद पर ताज़ा बंदिशें आयद की हैं। मगरबी एशिया के बहरान में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। वेनेजुएला में 24 जून को तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,000 से ज़्यादा हो गई है। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुँच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को वसी तर करते हुए दिफाई शराकतदारी तक पहुँचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दोतरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया। ये फैसला ऑकलैंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी ताउन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दोतरफा लॉजिस्टिक मदद का माहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरक ऐलानिया में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह किया, जिससे एक आज़ाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई इनके मुश्तरक अज़्म का इरादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालमियत और उसूलों पर मबनी बैन अवी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन जामे और बाहमी फ़ायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ादाना तिजारती माहदे FTA की

0: क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकेश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। बाकी क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मायामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल कंसास सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुकोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हेसार कर रही हैं, जबकि अपने सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर एक यैनिक सिन्नर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। भारत ने अपनी पहली पारी में कुल 285 रन बनाए थे। भारतीय वक्त के मुताबिक खेल सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक पहुंचाया है। उन्होंने दोतरफा तिजारत को दोगुना करके साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपये तक पहुँचाने का निशाना मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लगसन के साथ वफ़ की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को एक ऐसा तारीखी संगी मील करार दिया जिससे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। और अमेरिका ने ईरान से राबते वाले अफराद पर ताज़ा बंदिशें आयद की हैं। मगरबी एशिया के बहरान में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: श्रोते हो FM बैंड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। सकाळचे 10 वाजले। आस्वाद घेऊयात गीतगुंजन या मराठी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमाचा। आणि कार्यक्रमात आपण सुरुवातीला ऐकूयात अजय अतुल यांच्या स्वरातलं गुरु ठाकूर यांचं गीत, चित्रपट लय भारी आणि स्वर अजय गोगावले यांचा।

0: श्रोते हो, या गीताबरोबरच आजचा गीतगुंजन हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम इथेच समाप्त करत आहोत. हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला FM बँड 101.7 मेगाहर्ट्सवर आकाशवाणीच्या छत्रपती संभाजीनगर केंद्रावरून.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं. इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम. ये अभियान अद्भुत अभियान रहा. जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है. पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है. मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूं. मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ माँ के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए.

0: नमस्कार श्रोताओं श्रोताओं, आज के हिंदी कार्यक्रम गरिमा में मैं लीना पांडे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और श्रोताओं, अपने साहित्यिक कार्यक्रम में आज हमारे साथ है हिंदी साहित्य की चर्चित कवयित्री दोलन राय जी। उनकी कविताओं में नदी की संवेदना, मन की गहराई, खिड़की से खुलती संभावनाएं और मुक्ति की आकांक्षा और स्त्री अस्मिता का सशक्त स्वर सुनाई देता है। तो चलिए उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी कविता का आनंद लेंगे और उनके साहित्य सफर के बारे में हम जानेंगे। दोलन जी, आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रम गरिमा में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: दोलन जी, सबसे पहले अपनी साहित्यिक सफर के बारे में बताइए कि कविता आपके जीवन में कैसे आई?
1: मेरे जीवन में कविता कब आई और कैसे आई? जब ये आई तो मैं समझ ही नहीं पाई, क्योंकि इतनी स्वाभाविक थी इस कविता और साहित्य का आना। जब से मैं अनुभूति करने लगी चीज़ों को, प्रकृति में पंछियों को, आकाश को, तो और मैं बहुत प्रेम से देखती पंछियों को, तो अपने आप ही मेरे अंतर्मन में कविता का जन्म हुआ। मैंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, ये बहुत स्वतः और बहुत स्वाभाविक था।
0: मतलब बचपन से ही आपका कवि मन आपके साथ साथ ही बड़ा होता गया।
1: हाँ,
0: ये कहने में कोई
1: हाँ,
0: हर्ज नहीं होगा। आपकी कविता है फिर मुक्ति कौन चाहता है, तो आप मुक्ति किस चीज से चाहते हो?
1: मुक्ति एक मेरा मानना है, क्योंकि मेरी जो भी कविताएं हैं वो केवल भाव पर नहीं, उसमें कुछ दर्शन भी होता है। तो हर व्यक्ति के मन में एक मुक्ति की एक आशा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो मुक्त रहे, उन्मुक्त रहे, वो उस पर कोई बंधन ना हो, वो अपने विचारों को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त कर सके, उसे कोई किसी भी तरह की अवहेलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा स्वीकृति चाहिए। और ये जो स्वीकृति की जो आशा है, ये बाद में एक मुक्ति का रूप लेती है, क्योंकि इंसान समझने लगता है कि हर जगह उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल मुक्त लोग ही मुक्त करवा सकते हैं।
0: यही आपने अपनी कविता में दर्शाया, तो क्यों ना हम ये कविता सुने?
1: बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ ये कविता। फिर मुक्ति कौन चाहता है, बंधन को बंधन ही नहीं माना, तो मुक्ति की खोज मैं कैसे करती है? मैं तो प्रतीक्षा की ऊर्जा से हर संध्या एक दीप जलाती रही और उसके कंपन में तुम्हारे लौट आने की आहट सुनती रही। तुम्हारा लौट आना किसी उत्सव से कम नहीं लगता था, जैसे लंबे अंधेरे के बाद आंगन में उतर आया हो उजाला। तुम्हारा प्रेम मुझे केवल आकर्षण नहीं, उत्कर्ष लगता था।

0: तुम्हारा संवाद केवल शब्द नहीं, एक गहरा विमर्श लगता था। तुम्हारे साथ मैं स्वयं को खोती नहीं थी, बल्कि और अधिक पा लेती थी। तुम्हारे होने से मेरा संसार छोटा नहीं और विस्तृत हो जाता था। समर्पित मन बंधन का भार नहीं जानता। समर्पित मन बंधन का भार नहीं जानता, वह तो अपने प्रिय में अपना विस्तार देखता है। जिस हृदय ने प्रेम को स्वेच्छा से स्वीकार किया हो, वह बंधन के बोध से ही मुक्त होता है। फिर वह किसी और मुक्ति की खोज क्यों करे? प्रेमी बंधन चाहता है। वह किसी के नाम की एक जगह अपने हृदय में सुरक्षित रखना चाहता है। प्रेमी का समर्पण चाहती है। वह अपने विश्वास का एक निर्मल आकाश रचना चाहती है। दोनों ही एक दूसरे में घर तलाशते हैं। फिर मुक्ति की राह पर कौन निकलता है? शायद वही जिसने प्रेम को बंधन समझ लिया हो, क्योंकि जिसने प्रेम को अपने संपूर्ण सौंदर्य में जाना है, उसके लिए प्रिय का हाथ थामना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। और जहाँ प्रेम है, स्वीकृति है, प्रतीक्षा है, समर्पण है, वहाँ मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, वहां तो प्रेम ही मुक्ति का दूसरा द्वार है।
1: वाह वाह, बहुत ही सुंदर कविता है। प्रेम ही मुक्ति का दूसरा द्वार है, मतलब प्रेम की एक अलग ही ऊंचाई आपने बता दी है हमको। आपकी और एक कविता है नदी का मन। मतलब कवि का मन तो वैसे स्वैर होता है और उसकी सोच भी अथाह होती है, तो आपकी जो कविता है नदी का मन, तो नदी का मन भी होता है जैसे अपना मन होता है, तो नदी का कैसे मन आपने बना लिया?
0: कोई भी कवि और जिसका कवि हृदय है या कवि मन है, बच्चों का मन कैसा होता है, निर्जीव चीजों को भी सजीव समझ लेते हैं, वैसे कवि का मन भी ऐसा ही कुछ होता है। वो हर चीज से संवाद कर सकता है, हर चीज से वो जीवित सोचता है, इसीलिए संवेदनशील होता है।
1: सही,
0: तो मैं नदी को समझती हूँ, वो जीवित है और किसी भी जीवित चीज से, कोई भी जीवित है उससे संवाद तो कर ही सकते हैं। और जीवित चीजों में मन होता है, हृदय होता है,
1: ये चीज सिर्फ कवि ही कर सकता है
0: जी।
1: तो बिल्कुल अपनी ये जो आपकी कविता है नदी का मन, इसका शीर्षक ही बहुत प्यारा है, तो हम भी सुनना चाहेंगे क्या है नदी का मन।
0: बहुत सुंदर हुआ है नदी का मन, क्योंकि वो बहता है। नदी का मन कैसा होगा? शायद उल्लास से भरा, उत्सव सा जीवंत। नदी का मन कैसा होगा? शायद उल्लास से भरा, उत्सव सा जीवंत और जीवन को जगाने वाला उत्प्रेरक। नदी क्या चाहती होगी? बस इतना, हर किनारा उन्नत हो। हर जीवन उन्मुख हो, हर हृदय उत्तम बन जाए। जब वह बाढ़ बनकर उमड़ती है, तो केवल जल नहीं लाती, शायद उसकी हृदय में सदियों का कोई पहाड़ पिघलता है। निरादर सहकर भी वह बहना नहीं छोड़ती, रेगिस्तान में पहुंचकर रेत की प्यास बन जाती है और नभ में उठकर श्वेत बादलों का स्वप्न। समीर के संग वह अधीर होकर गुनगुनाती है, फिर भी मन पूछता है क्या वह सचमुच सागर से मिलकर ही पूर्ण हो जाती है? या अपनी पहचान का कुछ अंश वहीं छोड़ आती है, प्रकृति आज भी हम सबसे एक प्रश्न करती है, क्या तुम्हारे भीतर की नदी, क्या तुम्हारे मन की नदी में करुणा, प्रेम और आशा से अभी भी बहती है? क्योंकि सच तो यह है

0: क्योंकि सच तो यह है, हर हृदय में एक नदी बहती है। सच तो यह है, हर हृदय में एक नदी बहती है।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब नदी नहीं, आपने तो ये मानव मन का ही एक साक्षात दर्शन करा दिया है। और आपकी कविताओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं है तो बल्कि एक जीवंत पात्र बनकर आती है, तो इसका कारण क्या है?
0: इसका कारण यह है कि कवि अनुभव करता है, अनुभूति से भरा हुआ होता है। जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, तो वो खोजना चाहता है। वो सोचता है कि हम नदियों को गंदा करते हैं, हम नदियों में को प्रदूषित करते हैं, तो वो सोचता है कि अगर मेरे ऊपर किसी ने कचरा डाला और मुझे गंदा किया तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। तो वैसा ही अनुभव वो कवि इसलिए लिख पाता है कोई भी चीज, या लिखती है या लिखते हैं, क्योंकि वो अनुभव करते खुद स्वयं को उस जगह में रखकर। तो जब हम स्वयं को उस जगह में रखेंगे तो हम उस पीड़ा को अनुभव कर सकेंगे। हम अगर नदी को नदी समझेंगे, दूसरा समझेंगे, तो नहीं अनुभव कर पाएंगे। हम जब सोचेंगे कि मैं ही वो नदी हूँ, मैं ही बह रही हूँ, मैं ही किसी चट्टान से टकरा गई, मैं ही किसी पहाड़ को चीर कर निकल गई, तो फिर मेरा मन दूसरा हो जाएगा, फिर मैं अनुभव करने लगूंगी।
1: ये संवेदनशील मन ही ये सब बातें सोच सकते हैं, हाँ, जो कवि सोचते हैं। हाँ। एक आपकी कविता है आहुति, मतलब समर्पण, तो ये समर्पणता, ये आहुति, आप क्या दर्शाना चाहती है इसके बारे में?
0: आहुति का मतलब होता है पूर्ण समर्पण, आप सरेंडर कर रहे हो। पूर्ण समर्पण व्यक्ति कब करता है? जब उस व्यक्ति के अंदर सारी चीजों की समझ पैदा हो जाती है, वो चीजों को बोध, तो उसे फिर समझ में आने लगता है कि ये जीवन क्या है। ये जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कभी कभी हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने प्रयास किया, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ या किया, तो फिर भी हमको एक ऐसा अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सारी चीजें हमारे वश में नहीं है, कुछ चीज हमसे करवाई गई हैं। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक जरिया हूँ, लेकिन हम एक कठपुतली की तरह हैं। कभी कभी अनुभव होता है हर संवेदनशील व्यक्ति को या हर व्यक्ति को कि मैं तो एक कठपुतली हूँ, मेरी डोर कहीं और है, कोई मेरी डोर को खींच रहा है और मैं बस
1: नचा रहा है।
0: हाँ, बेसिकली ये जो कविता है ये भगवान को ही अर्पित है, ये एक स्पिरिचुअल कविता है, एक आध्यात्मिक कविता है, क्योंकि आप आध्यात्मिक व्यक्ति जब बनते हैं या आध्यात्मिक सोच आती है तो आप की सोच बहुत विस्तृत हो जाती है। दृष्टि हमारे पास है, हम दृष्टिकोण का उपयोग करके चीजों को देखते हैं। तो ये मेरी एक ये आहुति पढ़ती हूँ मैं। आहुति, मैं तो केवल आहुति हूँ यज्ञ की, मैं तो केवल आहुति हूँ यज्ञ की, जैसे कोई इच्छा अनभिज्ञ की। अनभिज्ञ उस ईश्वर को कह रही हूँ। मैं तो केवल प्रतीक्षा हूँ सत्य की, जैसे मौन आराधना हो नित्य की, जैसे मौन आराधना हो नित्य की। मैं तो केवल अभिव्यक्ति हूँ वेदना की, जैसे अंतिम सांस हो चेतना की। मैं तो केवल अभिव्यक्ति हूँ वेदना की, जैसे अंतिम सांस हो चेतना की। मैं तो केवल परिभाषा हूँ त्याग की, जैसे निष्काम साधना हो अनुराग की, जैसे निष्काम साधना हो अनुराग की। मैं तो केवल अनुभूति हूँ शून्य की, जैसे पहली किरण हो पुण्य की। मैं तो केवल संभावना हूँ सृष्टि की, जैसे मौन स्वीकृति हो किसी दृष्टि की। मैं तो केवल परछाई हूँ आकाश की, जैसे अंतिम आशा हो विश्वास की। मैं तो केवल यात्रा हूँ, मैं तो केवल यात्रा हूँ अनंत की, जैसे धड़कन हो किसी संत की। मैं तो केवल मिट्टी हूँ सृजन की, जैसे अंतिम मुस्कान हो जीवन की। मैं तो केवल मिट्टी हूँ सृजन की, जैसे अंतिम मुस्कान हो जीवन की। मैं तो केवल आहुति हूँ यज्ञ की, जैसे कोई इच्छा अनभिज्ञ की।
1: वाह वाह, बहुत ही सुंदर कविताएं। यज्ञ, आहुति और समर्पण के बारे में जो आपने बोला है, तो मुझे ये बताइए कि कविता जब आप लिखते हो तब आपका भाव पहले आता है या शब्द पहले आते हैं?
0: पहले भाव। और मन में भाव आता है, कभी भी भाव आता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये भाव मतलब घड़ी की सुइयों के साथ नहीं चलता,

0: ये कभी कभी रात को भी आ जाता है, 2 बजे 3 बजे, तो तब बहुत ऐसा। और जैसे प्रसव पीड़ा होती है ना औरतों को, जब बच्चा को जन्म देती है, कवि के मन में ना बहुत पीड़ा होती है जब वो कुछ लिखता है ना, या खूब अनुभव करता है, बहुत गहरी संवेदना में डूबता है, तो प्रसव पीड़ा के जैसे उसके हृदय में पीड़ा होती है। माँ बच्चे को जब जन्म देती है उसके बाद वो एकदम शांत हो जाती है, वैसे कविता के जन्म के बाद भी कवि शांत हो जाता है।
1: जिस तरीके से आपने बोला कि सृजन या निर्माण की एक शक्ति होती है जो कवि में होती है, और उसके बाद उसको जो सुकून मिलता है तो वो किसी और ही स्तर पे लेके जाती है। तो ऐसी ही आपकी एक कविता है खिड़की। तो खिड़की ये किसका प्रतीक है? आशा, संवाद, आत्मदृष्टि या कुछ और है?
0: खिड़की और दरवाजे प्रतीकात्मक हैं कि आप किसी नए चीज का या अपना जो हृदय है उससे आप बाहर, जैसे आत्म केंद्रित नहीं होना है आपको, आप हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं। आप जब खिड़की में बैठते हैं या दरवाजा खोल के रखते हैं तो आपको एक प्रतीक्षा होती है। खिड़की में साधारणतः लोग क्यों बैठते हैं? अब बाहर का नजारा देखने के लिए। और वो बाहर का नजारा क्या है? आपको आत्म केंद्रित जो हम होते जा रहे हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं, मैं, तो खिड़की आपको वो दृष्टिकोण देता है कि आप बाहर की दुनिया में देखें, और आपको सुकून मिलता है। पथ में पथिक दिखते हैं, पथ कितना दूर जाता है, इस पथ का मंजिल क्या है, बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हम भी सुनना चाहेंगे या खिड़की के बारे में आप क्या देख रही हैं खिड़की से?
0: कुछ खिड़कियां हमेशा के लिए बंद ना हो, कुछ खिड़कियां हमेशा के लिए बंद ना हो, वही अच्छा है। खिड़की अवचेतन मन की धीमी दस्तक है, खिड़की अवचेतन मन की धीमी दस्तक है, वह मन जो पूर्णतः नहीं बोलता, वह मन जो पूर्णतः नहीं बोलता, वह मौन भी नहीं रहता, वह जो पूर्णता नहीं बोलता, मौन भी नहीं रहता, अधूरी इच्छाएं अनकहे शब्द, अधूरी इच्छाएं अनकहे शब्द, और स्मृतियों की परछाइयां चुपके से वहीं आकर बैठती हैं। कहाँ? उसी खिड़की में। खुली खिड़कियां देती हैं भीतर की दुनिया को थोड़ी सी रोशनी, खुली खिड़कियां देती हैं भीतर की दुनिया को थोड़ी सी रोशनी, और रखती है जीवंत स्वयं से मिलने की सच्ची संभावनाएं हैं, स्वयं से मिलने की सच्ची संभावनाएं हैं ये खिड़कियां।
1: बहुत ही सुंदर कविता है ये आपकी, जो आपका एक सामाजिक दृष्टिकोण दिया है। ये हमको इस खिड़की के आपकी ये कविता से, आपकी शब्दों से समझ में आता है कि आपको समाज से भी कितना लगाव है या समाज से आप जुड़ी रहना चाहती है। तो कहता है कि समाज में रहने वालों को सामाजिक भी रहना जरूरी है, और हम हमेशा अगर हम समाज से कुछ लेते हैं तो देना भी अपना कर्तव्य है। और यही आपकी एक कविता है जो सामाजिक अंग से जाती है, नीलामी। तो ये क्या है?
0: नीलामी जो कविता है वो आज के परिप्रेक्ष्य में है। आज की दुनिया जो है वर्ण शंकर हो गई है, दिखावटी दुनिया में हम रहते हैं, आभासी दुनिया में हम जी रहे हैं। यहाँ पे रिश्तों की गहराई कम होती जा रही है, विचारों की गहराई कम होती जा रही है, लोग यथार्थवाद के नाम पर एक दूसरे का शोषण तक कर लेते हैं। तो इसी पर मैं लिखी हूँ ये कविता नीलामी। नीलाम मतलब हम चीज़ों को खोते जा रहे हैं, हम उसकी जो सौंदर्य है ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते। नकली चीज़ों का सौंदर्य, नकली चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहती, उस पर है ये कविता नीलामी। वर्ण शंकर विवेक ने, विवेक को वर्ण शंकर कहा, आर्टिफिशियल वर्ण शंकर विवेक ने, लोलुपता के अतिरेक ने, विस्फारित मन को खंडित कर, न्याय को ही दंडित कर, गगनचुंबी झूठ ने, मिलावट की इस लूट ने, सिक्के उछाल कर अंतिम नीलामी की घोषणा कर दी है, सिक्के उछाल कर अंतिम नीलामी की घोषणा कर दी है, घोषणा हुई है एक भी जागृत मान

0: मानव न बचे, एक भी जागृत मानव न बचे, कोई प्रश्न चिन्ह शेष न रहे, कोई सत्य का दीप न रचे, नीलाम कर दो चेतना को ताकि कोई वेदना न समझ सके, ताकि कोई वेदना न समझ सके, नीलाम कर दो संवेदना को ताकि कोई अश्रु न पड़ सके, भव्यता के महलों में दिव्यता को कैद कर दो, भव्यता के महलों में दिव्यता को कैद कर दो, अनुराग को बाजार में उतारो, विश्वास को भी बेच डालो, समाप्त कर दो भावों को ताकि कोई प्रेम न कर सके, समाप्त कर दो भावों को ताकि कोई प्रेम न कर सके, दंडित कर दो त्याग को, दंडित कर दो त्याग को ताकि कोई समर्पण न जी सके, नीलाम कर दो मौन को, नीलाम कर दो विचार को, शब्द बचे पर अर्थ मर जाए, शब्द बचे पर अर्थ मर जाए, भीड़ बचे पर मनुष्य खो जाए, भीड़ बचे पर मनुष्य खो जाए, इतना शोर रचो कि अंतरात्मा की आवाज सदैव के लिए दब जाए, पर स्मरण रहे, पर स्मरण रहे, सत्य की नीलामी कभी नहीं होती, करुणा का मूल्य कभी नहीं लगाया जा सकता, जब भी कोई एक मनुष्य अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, जब भी कोई एक मनुष्य अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, जब भी कोई एक हृदय प्रेम को बाजार से बचा लेगा, प्रेम को बाजार से बचा लेगा, उसी क्षण नीलामी का मंच ढह जाएगा, उसी क्षण नीलामी का मंच ढह जाएगा और मनुष्यता फिर से अपना मूल्य पालेगी, मनुष्यता फिर से अपना मूल्य पालेगी।
1: वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, मतलब आंखों में अंजन डालने वाली ये कविता है कि समाज में हम रहते हैं तो किस तरह से रहना चाहिए, ये सब दर्शाती है। ये बहुत ही सुंदर शब्द है आपके। आपकी कविताओं में स्त्री बहुत मुखर दिखाई देती है, क्या यह आपका व्यक्तिगत अनुभव है या समाज का सामूहिक अनुभव है?
0: सबसे पहले तो मैं खुद ही एक स्त्री हूँ और मैं दूसरी स्त्रियों के जो मन की दशा और भावों को समझती हूँ, और मुझे लगता है कि स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा समर्पित होती हैं और उनका ये रहता है कि वो इतनी भावुक होती हैं, इसीलिए एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि हर स्त्री भाव के तल पे जीती है, और यदि वो विवेक के तल पे जीने लगे तो स्त्री का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो स्त्री जो है वो उसकी भावना को लेकर यह रिक्त लिखी हूँ, क्योंकि देने वाला हमेशा रिक्त ही हो जाता है, है ना, क्योंकि उसने जितना समर्पण दिया उतना समर्पण वापस नहीं किया गया, जितना प्रेम उसने किया वो उसको वो प्रेम अनुभव नहीं करवाया गया, लौटाया तो नहीं जा सकता है, प्रेम अनुभव करवाया जा सकता है, नहीं करवाएगा तो रिक्त अनुभव करती है।
1: तो हम भी सुनना चाहेंगे आपकी ये सुंदर सी कविता।
0: हे रिक्त, लोग तुम्हें शून्य कहते हैं, लोग तुम्हें शून्य कहते हैं, मैं तुम्हें सृष्टि की पहली अनुभूति कहती हूँ। लोग तुम्हें शून्य कहते हैं, मैं तुम्हें सृष्टि की पहली अनुभूति कहती हूँ। बीज भी रिक्त मिट्टी की गोद में अंकुरित होता है और प्रेम भी। बीज भी रिक्त मिट्टी की गोद में ही अंकुरित होता है और प्रेम भी। रिक्त हृदय में ही जन्म लेता है, रिक्त हृदय में ही जन्म लेता है। जो भर गई वह ठहर गई, जो रिक्त रही वही नदी बनकर बहती रही। जो भर गई वो ठहर गई, जो रिक्त रही वही नदी बनकर बहती रही। हे रिक्त तुम अभाव नहीं, हे रिक्त तुम अभाव नहीं, अनंत भावनाओं का विस्तार हो। तुम मौन नहीं हर सत्य का प्रथम स्वर हो, तुम मौन नहीं हर सत्य का प्रथम स्वर हो। मैंने देखा है जो स्वयं को भरती रही, मैंने देखा है जो स्वयं को भरती रही, वे अपने ही भार से झुक गई। मैंने देखा है जो स्वयं को भरती रही, वह अपने ही भार से झुक गई। जो स्वयं को रिक्त करती रही, वे आकाश सी विस्तृत हो गई, वो आकाश सी विस्तृत हो गई। हे रिक्त तुम इतना रिक्त कर देना, हे रिक्त तुम मुझे

0: इतना रिक्त कर देना कि मेरा अहंकार झर जाए, मेरे भीतर केवल करुणा रह जाए। हर स्त्री के मन की यह भावना होती है कि मेरा अहंकार झर जाए, मेरे भीतर केवल करुणा रह जाए, मुझे इतना रिक्त कर देना कि मैं सम्मान नहीं समर्पण खोजूं, प्रशंसा नहीं प्रार्थना बन जाऊं, प्रशंसा नहीं प्रार्थना बन जाऊं, मेरी आंखों में किसी के लिए तिरस्कार न बचे, मेरी आंखों में किसी के लिए तिरस्कार न बचे, मेरे शब्दों में किसी के लिए कठोरता न बचे, इतनी रिक्त कर देना मुझे कि मैं स्वयं को ही भूल जाऊं, इतना रिक्त कर देना मैं स्वयं को ही भूल जाऊं, और जो भी मुझ में दिखाई दे वह केवल प्रेम हो, और जो भी मुझ में दिखाई दे वह केवल प्रेम हो।
1: वाह, ये इतनी सुंदर आपकी कविता थी, लेकिन आपकी कविताओं में प्रकृति बहुत ही अच्छे से आपने उजागर किया है, प्रकृति का स्वभाव कैसा है आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। तो प्रकृति अगर अपना स्वभाव बदल दे तो कितना तांडव हो सकता है, ये हम लोग तो देख ही रहे हैं, जैसे अतिवर्षा है या सूखा है या तो जंगल की आग है, ये बहुत सारे रूप हमने देखे हैं। ये सिर्फ होता है जब प्रकृति चिढ़ जाती है या कुपित हो जाती है, तो ये सब होता है। तो आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, आपकी एक कविता है सुंदर सी जंगल नाम की, तो इसका भाव हम सुनना चाहेंगे कि आपने क्या लिखा है इसमें।
0: प्रकृति कभी कुपित नहीं होती, प्रकृति प्रतिक्रिया करती है, जो हमने उसे दिया है उसको लौटाती है। प्रकृति का स्वभाव ही, वसुंधरा का स्वभाव ही प्रेम है, समर्पण है, देती है, वो लेती नहीं। लेकिन हम अपमान करते हैं प्रकृति को, गंदा करते हैं, हमने उसका शोषण किया, तो ये उसका विरोध है, एक जो प्राकृतिक विपदाएं हैं। इस जंगल कविता में मैंने प्रकृति को आदिवासी कन्याओं के साथ जोड़ा है। आदिवासी कन्याएं बहुत सुंदर लगती हैं, तो मैंने जब आदिवासी कन्याओं को देखा तो मेरे मन में ये कविता आई, मैं सुनाती हूँ आपको। पंक्ति में गेंदे के फूल जैसी चलती हैं, क्योंकि वो पंक्तियां बनाकर चलती हैं आदिवासी कन्याएं। पंक्ति में गेंदे के फूल जैसी चलती हैं आदिवासी कन्याएं, जैसे सुंदर माला विजयी धरती को प्रकृति ने पाला, विजयी धरती को प्रकृति ने पाला। नथ है सम्मान स्वरूप गोधूली वेला, नथ है सम्मान स्वरूप गोधूली वेला, प्रकृति रूपी सुंदर माँ के साथ किसने खेला, प्रकृति रूपी सुंदर माँ के साथ किसने खेला। क्षितिज के पार तक, स्वर्ग के द्वार तक, पंक्ति में चलना प्रतिदिन ढलना, रोम रोम में कला पढ़ सकती है मन, बना सकती है सुंदर सुंदर बांस की बनी टोकरी, टुकनी, सूपा, झापी, मिट्टी से, भूसे से, लकड़ी से रच सकती है एक सुंदर कलात्मक दुनिया। जंगल के पास है ज्ञान, नहीं है थोड़ा सा भी अभिमान, जंगल के पास है ज्ञान, नहीं है थोड़ा सा भी अभिमान। जंगल की सुंदरियां बनाती हैं खोपा, जंगल की सुंदरियां बनाती हैं खोपा, लंबे लंबे बालों में तोड़े हुए फूल से, पगडंडियों की धूल से करती हैं प्रेम बबूल से, करती हैं प्रेम बबूल से, मादर बजाकर खुद को सजाकर नाचती हैं कर्मा नृत्य, गाती हैं सुआ गीत आम जाम आंवला, पता है आम जाम आंवला, पता है जंगल का रंग है सांवला। कितनी सुंदर होती हैं ये आदिवासी बालाएं, जैसे चंद्रकलाएं, जैसे चंद्रकलाएं।
1: वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतनी सुंदर जंगल और आदिवासी बालाओं की आपने जो इतना सुंदर वर्णन किया है, और हमारी ये आज की कविताओं का आपने ये समापन इस कविता से किया है, बहुत ही सुंदर कविता है। तो दोलन राय जी, आपने अपनी संवेदनशील कविताओं और विचारों से हमारे श्रोताओं को एक नया दृष्टिकोण दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। और आप यहाँ पे आई, इसके लिए भी आपका पुनः एक बार मैं दिल से आपकी आभारी हूँ।
0: नमस्कार।
1: और श्रोताओं, आज के इस विशेष साहित्यिक संवाद गरिमा इस कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नयन पवार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। साल 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तआवुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पांचवें और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में

0: मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को तौसी देकर दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दो तरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्र किया। ये फैसला ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक, अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी तावुन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दो तरफा लॉजिस्टिक्स मदद का मुआहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्याल से आगाह किया, जिससे एक आज़ाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई उनके मुश्तरका अज़्म का इयादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालिमियत और उसूलों पर मबनी बैनुल अक्वामी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन, जामे और बाहम फायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती मुआहदे की तकमील और इस पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मुआहदे को जल्द अज जल्द लागू किए जाने और इस पर मुअस्सर तौर पर अमल किए जाने को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते रिश्तों के लिए न्यूजीलैंड में भारतीय बिरादरी का अहम रोल है। ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं।
1: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी फर्द की शख्सियत को बनाने में लाइब्रेरियों की अहमियत को उजागर करते हुए मुल्क की नौजवान नस्ल से कहा है कि वो लाइब्रेरियों का इस्तेमाल करें। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और कौमी लीडर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अहम खिदमात पेश की थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क को और उसके लोगों को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रिवायती दिफाई सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजियों को मजबूत करके एक ताकतवर, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फोर्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें हो सकता है कि मस्नूई जहानत और दीकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लड़ी जाएं, लेकिन बिलाखिर वो बहादुर सिपाहियों और बासलाहियत फौजी ताकत के साथ ही जीती जाएंगी। छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मशरकी बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IND महेंद्रगिरी को शामिल किया जाना भारत की बहरी ताकत और मुल्क में ही तैयार करने की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की समत एक संगे मील है।
3: समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी एक लाइफ लाइन। आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक

0: रीजन पर। और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामानिकारों से बात करते हुए जनाब गडकरी ने बताया कि शराकतदारों ने सड़क, रेल, फजाई और आबी ट्रांसपोर्ट को कार्बन के बगैर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और मुतबादल बायो ईंधन और आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजियों को अपनाने पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ज्यादा मजबूत, लचकदार और पायदार ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजियां और इख्तिरात का तबादला किया जा रहा है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रांसपोर्ट वजरा ने भी इस मीटिंग के दौरान अपने ख्यालात और बयानात पेश किए। रेलवे और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को एक बड़ा तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का हब बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद को बुलेट ट्रेन के साथ पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ जोड़ने की तजवीज रखी गई है। हैदराबाद में एक सनती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार रेल नेटवर्क सफर के वक्त को कम करेगा और जनूबी भारत के बड़े इकतसादी मरकजों के दरमियान कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तूफान बावी आज मशरकी बुहेराए चीन में शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बायस जापान के जनूबी जजायर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि ताइवान और मशरकी चीन तूफान से निमटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 144 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल रफ्तार वाली हवाओं के साथ इस तूफान के बारे में पेशगोई की गई है कि ये चीन के सूबे जेजियांग में कल सुबह सवेरे खुश्की से टकराने से पहले ताइवान के शिमाल से गुजरेगा। हुकाम ने समंदर में तुफानी और बुलंद लहरों की वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से जापान के ओकिनावा सूबे में 200 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं और स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत साउथैम्पटन के यूटिलिटा बोल में टी20 बैनुल अक्वामी सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड 3-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। फीफा आलमी कप में दीगर क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मियामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसर सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: उर्दूतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून आपण ऐकल्यात। श्रोते हो, आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। दुपारचे 2 वाजले आहेत। प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं,
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओह मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालू का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप

0: ঘুরতে শমিকে পেড়, লুকাছিপি খেলতে গোড়াবার পক্ষী, গোর বনসে সজে উঠ। মিস্টার ওঝা, ইট ইজ নট লেস দেন এ ওয়ান্ডারল্যান্ড ফর মি।
1: আপ হরে ভরে বঙ্গাল সে আতি হ্যাঁ, ইসলিয়ে ইয়ে সুখা রঙহীন ল্যান্ডস্কেপ আপকে লিয়ে নই বাত হো সকতি হ্যায়।
0: নো মিস্টার ওঝা, যে তো এক ব্রড প্যানোরামা হ্যায়। ইস ব্যাকগ্রাউন্ড পর কলরফুল পরিধান, আর্ট, কালচার আর ইতিহাস কি জো রং উভরতে হ্যায়, লোক সঙ্গীত কি জো স্বর গুঁজতে হ্যায়, ভো সব কহনে কা নহি, ফিল করনে কা চিজ হ্যায়।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को एप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मान धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं, यहाँ किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: That's like a good guide. लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो, आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
1: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
0: हाँ पीर बाबा।
1: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
0: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
1: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
0: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
1: कैसे?
0: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है।

0: घड़ी खम्मान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अंजीर

0: जान लोग मांगणियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता। पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या अब डकैतों और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता। रहीमा इंसानियत की, वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहां आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी ज़बान से बगावत की बू आती
3: है। वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को माला माल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: ज्यादा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, ट्रेन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का

0: नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
2: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
2: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
2: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
2: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harsan. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harsan, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूं दीवान जी, अंदाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूं दीवान जी।
5: कैसी वारदात?
4: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
5: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
4: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
5: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
4: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
5: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
4: अच्छा, अलविदा।
5: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रहे भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूं करीमा। माल कहाँ है?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूं।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया उस अंधाधा को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई। चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा। इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा। आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी राज से टक्कर लेते रहना।

0: एक तमन्ना दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह,
1: या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ?
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमा, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन।

0: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
1: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
2: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ऊझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
1: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है। अच्छा। हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददीहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
2: जी,
3: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो

0: उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
1: जी।
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था। और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आँख खुली। और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की और ये सारी चीज़ें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछें तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता और।
1: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है
0: जी।
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर, कोई आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया।
1: क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा।
1: जी
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
0: जी।
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूँगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे।
0: हाँ।
1: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
0: फ्री नहीं बैठा।
1: हाँ, फ्री नहीं बैठा। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के, इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको

0: अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं, तो आपको ये सीखने को मिलता है। जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूँ, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है, और वही पूरी साहब में था
1: जी।

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात फीलिंग्स
1: जी
0: वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूँगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहाँ थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माई सन द फेनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी।

0: मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं
1: जी
0: कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
1: जी जी जी
0: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
1: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
0: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
1: हाँ
0: अब देखिए ना, उनके फ्लेवर देखिए आप। एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं वो, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते
1: जी
0: हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको, सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है,
1: बिल्कुल
0: हंसाना बहुत
1: बहुत
0: मुश्किल
1: मुश्किल।
0: है। तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी
1: जी
0: इनको
1: जी
0: मैं।
1: और
0: जी
1: इंटरनेशनल लेवल के कलाकार उनकी, मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से
0: जी
1: प्रभावित नहीं हुए।
0: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो
1: बिल्कुल।
0: सकता।
1: आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना,
0: जी
1: और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं
0: जी
1: तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी,
0: जी
1: तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
0: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीज़ें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं। और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीज़ों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
1: महत्व। जी।
0: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। वो मेरे लिए आत्मा की चीज़ है, उसको
1: जी।
0: सुनती हूँ।
1: तो
0: जी
1: अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
0: गुनगुनो ये तो आपने
1: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है।
0: एक लाइन गुनगुनाती हूँ।
1: जी।
0: मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी
0: अच्छा, छुपकर
1: जी।
0: क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीज़ें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज़ पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे
1: जी
0: पहला क्या
1: सब
0: लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस
0: क्या
1: यहीं
0: बात,
1: तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहाँ जहाँ पढ़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में

0: गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
1: जी
0: दिल्ली
1: हाँ,
0: में
1: जी।
0: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
1: जी।
0: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज़्यादा, तो काफ़ी पैसे का भी लॉस हुआ सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
1: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
0: जी कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
1: जी
0: गाने से
1: जी,
0: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं और एड,
1: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में यह कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
0: महानदी।
1: महानदी,
0: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहाँ पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीज़ों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुँच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहाँ पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज़्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
0: जी, मेरी पसंद का गीत।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में, आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीज़ों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज़्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं, तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज़्यादा रहे?
1: बहुत ज़्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं,

0: तो आपको भाषा भी उसकी वैसे ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
1: जी,
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
1: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस
0: जी
1: करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है।
0: जी
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफ़ी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही
1: याद
0: आती
1: आती
0: है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
1: बिल्कुल
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज़्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपये आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
1: जी। जी एक ज्वलंत विषय है ये जिस जी. पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी
0: जी।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिसे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही हूँ, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दे, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द हैं कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूज़िक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का, 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
0: हर पलम सीखती
1: जी,
0: ही है।
1: जी।
0: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा, है ना,

0: से ही संघर्ष शुरू हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए।
1: सही
0: समय
1: कहा।
0: लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों को। एक ज़माने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ, मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद, मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी कि
1: आउटस्पोकन
0: आउटस्पोकन
1: जी
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा, एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो ज़रूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है।
1: जी
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो,
1: जी
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत।
0: उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी बन जाएगा,
1: जी
0: स्टार
1: जी
0: नहीं बनते हैं ना।
1: तो
0: जी
1: कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी कंपनी में हैं, किसी भी महकमे में वो काम कर रही हैं, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी
0: तब
1: ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं, शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में। तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत ज़रूरत है।
1: जी चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: पर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला।

0: को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। प्यार मोहब्बत इश्क की बातें आसान कहां हैं। एक ओर उनके दीदार का रहता है इंतजार, तो वहीं उस नजर का तीर भी हो जाता है दिल के आर पार। नजरों की इनायत और नजरों की बगावत का अंदाजा तो उन्हीं को है जिन्होंने खाई है चोट एक नजर की। वो एक नजर जो दिल को अपने साथ बांध ले जाए, या वो नजर जो दिल को तार तार कर जाए और दिल आह भर कर ये कह उठे।

0: गई रे।
1: उफ, ये प्यार करना भी किस दौर में आसान रहा है। दुनिया जमाने की नजरों की परवाह कहाँ चैन लेने देती है प्रेमी युगल को। न मिलना आसान है, न बातें करना। मुलाकात यूं खत्म हुई जाती है कि मानो पलक झपकी और वक्त बदला। आखिर ये दिल दीवाना भी खुद को संभाले कब तक। कभी थामा जो हुस्न का आंचल, तो बेबस नजर कह उठती है, करती है यही गुजारिश।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मिलने की तमन्ना है और चारों ओर जमाना है। जमाने की इस पहरेदारी के बीच आखिर दो दिल मिले तो किस तरह, ना दो बातें हो सकती हैं, ना नजरें चार। भाई कैसे संभाले ये दिले बेकरार, ना छेड़ा कोई तराना, ना बजाई कोई धुन, ढलने लगी है शाम, अब ये तो बताओ कैसे ढूंढे तुमको हम।

0: आप सुन रहे हैं छाया गीत। भाई बहुत हुई दुनियादारी, मोहब्बत की भी है अपनी जिम्मेदारी। अब इस दुनिया के सामने कर दिया है ऐलान, जो करना है कर लो, देखा जाएगा अंजाम। इस दुनिया से अब डरने का समय हुआ खत्म, आहें ना भरेंगे खुल के कहेंगे हम, क्या हुआ जो दिल हमने दिया, क्या हुआ जो दिल तुमसे लिया। मोहब्बत के दुश्मन ए जमाने सुन ले, की है मोहब्बत कोई चोरी तो नहीं, दिल के बदले लिया है दिल, अब तेरी सुनेंगे नहीं।
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: हमने तो इश्क में दुनिया भुला दी और वो हमसे पूछते हैं कि तुम हमारे हो कौन।

अब तक तो सताती रही दुनिया की रस्में, अब कैसे तुम्हें समझाए अपने दिल की कस्में। वो तुम्हारी आंखें ही थी जिन्होंने किया था पहला वार, और काम से गया था अपना ये दिल बेकार। अब करोगी ऐसी बातें जनाब, तो इश्क का इश्क से ही मिलेगा जवाब।

आ ही गई वो प्यार की देवी हमारे सामने, देख के जिसको लगा ऐसा कि अपने दिल को थाम ले। अब क्या करेगी ये दुनिया सारी, वो तो खुद ही उसके हुस्न परवारी। कल तक जो कहते रहे मोहब्बत को बड़ी बीमारी, आज खुद ही दिल को हाथ में लेकर कर रहे हैं खुद ही देने की तैयारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहाँ निखिल रविशंकर आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता

0: विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: The Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries Chirag Paswan said the achievement is not merely a milestone to celebrate but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Viksit Bharat. Union Railway and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. The minister also highlighted India's growing electronics and semiconductor sectors, saying the country has adopted an AI as a service model and that Telangana is playing a key role in electronics manufacturing. A speedboat carrying Indian tourists capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. According to local media reports, 15 people are feared dead while 21 people were rescued. The boat carrying 32 Indian tourists and 4 crew members overturned about 400 meters off Hon Mai Rut Mai Island, triggering a rescue operation. The Indian Embassy in Hanoi today said the exact details of the incident are being ascertained. A search and rescue

0: भारतों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
1: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिकरूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिकसहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिकसहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्ट चर्चतः क्वीन्सटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसम्बोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लेक्सन इत्यमुना उभय देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रावोचत् यत् भारतं पारम्परिकरक्षाक्षमतां सहैव आधुनिकप्रौद्योगिकीं सुदृढीकृत्य एकां बलशालिनीम् आत्मनिर्भरां रक्षासेनां निर्माति। तेन प्रतिपादितं यत् आगामी युद्धेषु कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः एवमेव अन्येषां नवीनतन्त्राणां प्रयोगः भवितुमर्हति, परञ्च अन्तिमरूपेण विजयः राष्ट्रियसङ्कल्पेन वीरसैनिकैः सक्षमसैन्यशक्त्या एव प्राप्स्यते। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी पारम्परिकसैन्यबलं च परस्परं पूरकौ स्तः। सहैव भारतम् आत्मनिर्भरभारतसङ्कल्पस्यान्तर्गतं द्वयोः अपि क्षेत्रयोः उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधातुं कटिबद्धं वर्तते। श्रीराजनाथसिंहः अद्य विशाखापत्तनम् नगरे स्वदेशीयायाः प्रोजेक्ट 17A प्रणाल्याः षष्ठस्य INS महेन्द्रगिरि नामकस्य स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोतस्य नौसेनायाः पूर्वीयपोतदले सम्मेलनं समारोहं सम्बोधयन् आसीत्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन अथ राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य महाराष्ट्रस्य नागपुरे तृतीय ब्रिक्स परिवहन मन्त्रिणां परिषदः अध्यक्षतां विहितवान्। सम्मेलनस्यास्य समाप्त्यन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणः असौ अब्रवीत् यत् बहुभ्यः देशेभ्यः समागतैः प्रतिनिधिभिः वैकल्पिक जैव इन्धनानाम् अथ प्रदूषणमुक्त प्रौद्योगिकीनाम् उपयोगेन भूमार्ग, रेलमार्ग, विमानयान, जलमार्गेषु च कार्बन तटस्थ परिवहनं विकासयितुं कृतानां प्रयासानां विस्तरेण समीक्षा कृता। असौ प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये संकट प्रतिरोधकाय, सुस्थिराय च परिवहन क्षेत्राय परस्पर सहयोगं सुदृढं विधातुं आधुनिक प्रौद्योगिकीनां नूतनान्वेषणानां च आदान प्रदानं क्रियते। अद्य व्यावी चक्रवातः पूर्ण चीन सागरे प्रचण्ड वेगेन प्रवर्धमानः सन् जापानस्य दक्षिणेषु द्वीपेषु तीव्रवायुना सह अतिवृष्टिम् अजनयत्। अनेन सहैव तैवान देशः पूर्वीय चीन देशश्च चक्रवातस्य तट संघटनाय पूर्णतः सज्जो वर्तेते। ऋतुविभागस्य पूर्व

0: प्रसार भारतीच्या वेव्हज ओ टी टी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन ए आय आर ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6:30 आणि 45 सेकंद झाले आहेत. प्रसारित करीत आहोत हिंदी कार्यक्रम विविधा.
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम विविधा में आपका हार्दिक स्वागत है. मैं हूं आपका मित्र दीपक केसावलेकर. दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे वर्षा गीत. वर्षा अपने साथ ठंडी फुहारें, हरियाली, मिट्टी की सौंधी महक और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य लेकर आती है. रिमझिम बरसती बूंदें केवल धरती को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी नई ताजगी और उमंग से भर देती है. इन्हीं मधुर भावों को शब्द और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कुछ सुंदर वर्षा गीत. आइए वर्षा की फुहारों और प्रकृति के मनमोहक रंगों का आनंद लेते हैं. हमारे साथ हैं रामस्वरूप साहू जी, जो एक प्रसिद्ध गीतकार और कवि हैं. आपने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से देश भर में अपनी छाप छोड़ी है. तो लीजिए सुनते हैं रामस्वरूप साहू जी के वर्षा गीत उन्हीं के स्वरों में.
2: मेरा यह गीत वर्षा के देर से आने के संदर्भ में लिखा गया है. हमारे देश में तीनों ऋतुओं का आगमन होता है, वर्षा, शरद और ग्रीष्म. इसमें वर्षा ऋतु का अधिक महत्व है और इसमें प्रकृति आनंद प्रदान करने वाला वातावरण प्रस्तुत कर देती है, जीवनदायी. यह वर्षा ऋतु बहुत सुहानी होती है. अनुभूति करते हुए

मेरा अगला गीत वर्षा ऋतु आगमन के बाद प्रकृति में होने वाले बदलाव दर्शाता है। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं, मेदिनी प्रसन्न है, चारों तरफ हरियाली है, पशु पक्षी सभी आनंद मग्न हैं। आइए गीत सुनें।

ए मारे छिप गए तारे, उड़गनों ने पथ हेरा है, नभ पर मेघों का डेरा है। मेरा यह गीत बादलों के विभिन्न रूपों को वर्णित करता है। कभी वे काले और घने होकर आकाश को ढक लेते हैं, तो कभी सफ़ेद हल्के होकर हवा के साथ तैरते हैं। इस गीत में ये बादल गरजते हैं, चमकते हैं, तेज वर्षा करते हैं, तो कभी गरज कर हमें डराने लगते हैं, तो कभी बरस कर हमारे चेहरों पर खुशी ला देते हैं। सुनिए यह गीत।

सिंचित कहीं कहर बर पाते, जीवन अभिसिंचित कहीं कहर बर पाते, अर्चन आवाहन।

के अंकुर मन में उगते हैं, भरे भरे बदरा जब नव पर सजते हैं। मेरा अगला गीत वर्षा ऋतु के मनोहारी स्वरूप का अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। रिमझिम बारिश, हरियाली, झूमते पेड़ पौधे, खेतों में लहलहाती फसलें और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य इस गीत में आपको दिखाई देगा। वर्षा ऋतु के बाद धरती को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी आनंदित और ताजगी देगा, नई ऊर्जा से भर देगा। आइए इस सुंदर गीत के भाव

इस गीत के माध्यम से जल के महत्व तथा जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। मेरा यह गीत यह बताता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पानी की एक एक बूंद का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। जल को व्यर्थ ना बहने दें,

व्यर्थ ना बहने दें हम पानी, जीवन का आधार है पानी। अधिकाधिक हम पेड़ लगाएं, प्रदूषण से पर्यावरण

तो श्रोताओं, वर्षा ऋतु पर आधारित इन मधुर गीतों ने आशा है कि आपके मन को भी बारिश की ताजगी और हरियाली का सुखद एहसास कराया होगा। प्रकृति का यह अनुपम उपहार हमें आनंद के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश भी देता है। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन भी वर्षा की फुहारों की तरह खुशियों और उल्लास से भरा रहे, अब मुझे यानी दीपक के सावलेकर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे विविधा के अगले अंक में एक नए विषय और नई प्रस्तुतियों के साथ। नमस्कार। हमारा हिंदी कार्यक्रम विविधा आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए निर्माण सहयोग रहा रत्ना मगरे का। आकाशवाणी मुंबई के लिए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजू कुमार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद

0: देश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है।

0: कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436287930849155237414 और 8433452014 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें

0: में आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand.

0: स्विट्जरलैंड से होगा और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दो दिन का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा था। जनाब मोदी के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को बड़ी तकवीयत मिली है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 5 मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इनमें दिफा, सियाहत, खेल, कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटना, डेयरी और मवेशी परवरी शामिल हैं। जना मोदी के इस दौरे की एक बड़ी खासियत ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में कम्युनिटी का प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जना मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और दोतरफा तिजारत के समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सम्त भारत के सफर में तेजी आएगी।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त करार दिया और न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के लोगों के रोल की सताइश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब क्रिस्टोफर लक्सन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। किसी भारतीय वजीर आजम के गुज़श्ता दौरे के बाद से 40 साल के वक्फे का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगले दौरे में इतना वक्त नहीं लगेगा।
1: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: आज वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूब जाने से 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय सयाह, अमले के 3 अफराद और 1 अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासर कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं, +84362107930, +84915527314 और +84334520414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +84913089165। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के

नजदीक कश्ती के अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है, जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजोगम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में सभी जख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भारतीय सिफारतखाना और कौंसल खाना सभी जरूरी मदद फराहम कर रहा है और वियतनाम के ओहदेदारों के साथ करीबी रबते में है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत के लिए यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में इस महीने की 2 तारीख को काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय एक फितरी अमर है, लेकिन आईन और अवामी बहबूद के तई अहद मुकदम रहना चाहिए। गया जी में बिहार कानूनसाज असम्बली के अरकान के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदही को अव्वलीन तरजीह दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक फर्द की शख्सियत निखारने में लाइब्रेरियों के नुमाया रोल को उजागर करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो लाइब्रेरियों के साथ मुंसलिक हों। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी, मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके आवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामिया मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 सरकार पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाजाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संगे मील हासिल कर लिया है। मजकूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बाबंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगे मील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोग के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेर कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का कर्नाटक के मैसूरू में इंतकाल हो गया। वो 88 साल की थीं, वो ज़ईफ़ुल उम्री से वाबस्ता बीमारियों में मुब्तला थीं। एस जानकी ने 60 साल से ज्यादा के अपने करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 48,000 नगमे गाए, इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी जबान शामिल हैं। एस जानकी को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था, उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा उन्हें 33 स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड।

0: मंदिरों के सरोवर, वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, या कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो जब भी वर्षा हो उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है, उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारी व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक

0: कार्य कर रहा हूँ। भवन जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन जात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौर तिथि आएगा चंदन जात्रा के आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अर्घ संजोग किया जाता है। प्रभु के आज्ञा आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। तो अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अर्घ संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, बेस करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पथी होता है मूंग और नारियल का कोरा, जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही

कथा का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस शुष्क जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कर दिया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संचेषण के संकरण से बना है पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सिंगरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाएं, आंध्रा में चले जाएं तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाएं तो अल्फांस।

0: गुजरात में बेसन है, वैसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कटिहारा से आया।
0: ये साइज में सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कटिहारा में होता है, हमारे गाँव में। और भी बहुत सारी वेराइटीज है, लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
2: है मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं, जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए, जिसमें खट्टे मीठे हैं, और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
3: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा परमा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
4: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी हमारा ध्रुव उहे के जन्म में हो कुछ दिन हम अटारी में रहें फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेके ला छोड़ के चल देवे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ माँ गावे है।

0: जन करे राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हो, कबड्डी खेलत रहे हो, सूर खेलत रहे हो, खो खो खेलत रहे हो, तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से, बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रूम रूम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है, और ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रहे हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाओ है, तो सुने बरा थे कि के वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा में बैठ, अब कतका कन सुने ऐसे कि के कही तो एक हफ्ता के जत का कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए, उसी समय वो बोलीस कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसी की, आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो।

ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए के बात है उन मन रोना शुरू कर देते हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बार मालिक के हाथ

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला एति तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खाती हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मल्ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आती मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो कुछ चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गा लेता, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मोला बहुत अच्छा लगते, लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा माँ, भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्योंटल भेटे हूँ गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी

0: से दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की, लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
1: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यही संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपू माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपू माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपू शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपू विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपू माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मान

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमाली या जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: का तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

0: निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in